आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचया, ज्योति राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना पिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग मह आए, कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया। जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक इहो शरीर प्रवाण होवा, जिन सरगुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह ज्योत धरी, हर बिन अवरना देखो कोई, हर बिन अवरना देखो कोई, नदरी हर